विश्वामंदिरतयातस्सनातनोतनोर्मदीश्यं भक्तिरसामृत सिंधु भवतु सदायं क्रमोदायं भक्तिरसामृत सिंधु चरत परिभूत काल जाल धियं भक्त्या मकरान शीलता मुक्तीन अधिकान नमस्यामि भक्तिरसस्तपस्तुतिरखिलौ भगवन् मङ्गलप्रसङ्गस्यम् अज्ञेनापि मया स क्रियते क्रियते सुहृदां प्रमदाय एतस्य भगवद्भक्तिः प्रसामृतोपयोनिधे चत्यार खलु वक्षन्ति भागापूर्वा दयक्रमा तत्र पुण्यविभागेऽस्मिन् भक्तिभेदनिरूपके अनुक्रमेण भक्त्यव्यं लहरीणां चतुष्टयम् आद्य

ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।